0: सगल बनराए फूलंत जुलती सारी बनस्पति उसते फुल हल। फिर सतगुरु जी ने कहा
1: कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती।
0: हे जगत दे नाथ मैं तेरी आरती किवें कर सकदा, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। कि तेरी आरती मैं इस छोटे जे थाल विच करांगा? नहीं। हां भाई आप जो आरती करनी है शब्द के रूप में करनी है, ना थाल तैयार करने, ना दीवा बालना है, ना धूप अगरबत्ती की लोड़ है, ते ना ही फुल सुटन की लोड़ है। ये सतगुरु गुरु नानक पातशाह का हुक्म है। जे तुसी उस अकाल पुरख की आरती करनी है तो फिर किस प्रकार करो?

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़का रहे, कहते वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की

सैव जी कहन लगे किदे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है जो? कोई मां प्यो जोगा होता है, कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू किदे जोगा है? जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म

करके रहना चाहिए था। जेड़ा उहदे भै विच रहिंदा है सुखी रहिंदा है, ते जेड़ा उहदे नाल दावे करे, जेड़ा उहदे नाल गिणतियां गिणे, उह फिर सुखी नहीं रहिंदा। गुरु ने हम ध्यान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी सिख भी नाल, लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारियां रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होया। जोगा सिंह दावा लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई, जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु की चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, वो जोगा सिंह तेरी बड़ी

जोगा सिंह चक्कर कट के आया, पर वो पहरेदार हाले भी खड़ा। फिर जोगा सिंह मुड़ गया, फिर चक्कर कट के आया, पर पहरेदार दे हटदा नहीं। चक्कर कटदे हैं अमृत वेला हो गया, ना ते जोगा सिंह मुड़िया ते ना गुरु साहब की हटी। हुण जोगा सिंह ने मन विच सोचिया, पहरेदार दे हटदा नहीं, मैं क्यों ना चबारे चढ़ा। जोगा सिंह ने हिम्मत की, जद पौड़ियां चढ़न लगा ते हुण गुरु साहब तू बर्दाश्त ना होया, एक दबका मारिया, ओ सिंगा किथे चले हैं, जापदा गुरु दा सिंह है, सोना दाड़ा सिर ते दस्तार, हाथ विच कड़ा गात्री कृपां, तेड़ कशहरा पाए है, ओ जापदा गुरु दा सिंह चलिया वेसवा दे द्वारे, जा भज जा सोटा मारांगा तेनू, ओ जा जाके बाणी पढ़, बाणी पढ़।

जग सिखाने के यार सुते हुए नहीं, आराम कर रहे हैं। हैरान हो गया जोगा सिंह, ऐ वेला कोई सौण दा नहीं, क्यों सुते हैं? ते सिखाने के यार किसे मूर्ख सिख ने सतगुरां नूं सारी रात जगाई रखे है। ते जोगा सिंह गुरु साहब के कमरे जा पहुंचे, मत्था टेकिया, सतगुरु उठ के बह गए, अखां ला

कि सारी रात मैं पहरेदार बन के खड़ा रही। दुख है ते केवल इस गल का, तू मेनू बेसवा दे चुबारे थले खड़ा करवाया। वो जोगा सिया होवे मेरा सिख, होवे गुरु नानक का सिख, ते जावे वो बेसवा दे द्वारे। वो जोगा सिया ऐसे सिखा दी ते मैं कदी भी काम

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुर्दा आपसे नफरत छड़ के छोटियां मोटियां गल्लां छड़ के मन विच प्यार रखिए और सच जानना जिन्हां हिरदे विच प्यार नहीं जिन्हां दे मन विच प्यार नहीं उन्हां दे घरां विच प्यार नहीं जिन्हें घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है जिस घर विच दान पुन होता है घर वो है जिथे भलियाई वसती है आओ सत्संग इन्हां गल्लां अपने हिरदे विच थां दईए उपदेश से अमल कर

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुरु

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों की है, उत्थे स्पष्ट तौर पर नट नारायण महला चौथा पंजवां आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोला है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मान, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकर ढंग नाल लगते हैं। दोनों मध्यम लगते हैं। इस दे गौंव दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे के किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ये भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ये उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, इह सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन

भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता दी निशानी पाईसा पाई गुरुदास जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हैं, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हैं। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हैं भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

कृष्ण नूं मिले सुदामा ते सुदामा ने अपनी गरीबी नूं दूर करन लई भगवान पासों अपनी जबान तो कुछ मंगिया ने ते इधरों भगवान कृष्ण जी महाराज ने अपने मित्र दी गरीबी नूं जेड़ी के सामने नजर आ रही सी तन ते कपड़ा नहीं फटे पुराने कपड़े हन पैर विच जुत्ती कोई नहीं और गरीबी दावे नाल महाराजे भगवान कृष्ण अपने मित्र नूं मिलन आया है ते महानता यह है भाई साहब फरमान करदे हन भगवान कृष्ण दी कि जिथे सुदामे ने अपनी गरीबी नूं दूर करन वास्ते कुछ मंगिया नहीं उथे भगवान कृष्ण ने सुदामे दी गरीबी नूं उहदे सामने जतलाया भी नहीं ते अमीर मित्र कहिंदा है गरीब नूं बई तैनू कोई जरूरत है ते मैनू परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है मेरे कोलों कुछ लै जा ते गरीब होवे ते गरीब कहिंदा है अपने अमीर मित्र नूं कोई मेरी मदद कर दे संसार दे विच ते इह कुछ देखण विच आउंदा है मगर भाई साहिब भाई गुरदास जी जिहड़ी रमज तक पहुंचे कहिंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम ते इह जाणदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता परदखणा लई पैरी पै के गले लगाया और उहदे चरण धो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया ते सिंघासन ते बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता इतना प्यार कीता ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है इतनी उमरा हो गई है बड़ा चिर होया है मिलिया नूं कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे हन कि गुरु दी सेवा दी कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है गुरु याद आउन नाल गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है एकागर चित मन हो जांदा है भाई साहिब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन ओ सारे दे सारे कटे जांदे हन भाई साहिब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है ए स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब दे भी गुरु होए भगत रविदास जी दे भी गुरु होए ते पीपा जी दे भी गुरु होए अनेकां ही भगतां ने इन्हां पासों गुरु दीख्या लै के नाम जप के संसार नूं उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया इन्हां दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है शब्द किस तरह कोट करम करोड़ां ही माड़े कर्मां दा नाश करदा है स्वामी रामानंद जी फरमान करदे हन।

गुरु शब्द दी। गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन ओह नाश हो गए।

अकाल पुरख के लिए अरदास कर रहे हैं, मंगदे पीएम शुभ कर्म अपने वास्ते नहीं, आप तो निरंकारी ज्योत आपका निरंकार का ही स्वरूप करके दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं, साढ़े वास्ते मंग रहे हैं, साढ़े वास्ते ही महान वड्डी दास शुभ कर्म देह शिवावर मुहे है, शुभ कर्मन से कम हूं न करो, शुभ कर्म शुभ कर्म ही सबको बची है, बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल, परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए, विहार निर्मल होना चाहिए, परमार्थ का सदा ही निर्मल, जिसका विहार पवित्र है, विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है, दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन, तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा, शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है, जिसे को शुभ कर्म तो साइकिल भी दर्शन असा कलयुगी जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं, देह शिवावर मोहे है, ते ये भी कहते हैं कि कलयुगी दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज अगे अरदास की, शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं, असली उसका नाम महादेव सतगुरु जी ने आप फरमाया है, महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत में भेद, महादेव नु लोग शिव कहते हैं, वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला होवे रब की बंदगी करने वाला लोग उन्होंने कह दें भाई ये तो रब रूप ही, क्यों रब नाल जुड़े है, इस तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है, पर असल में शिव नाम अकाल पुरख, उस अकाल पुरख के अगे कलगी सैर दशमेश पिता जी ने अरदास की ये वर मंगी है, दे शिवा वर मुड़े के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार, तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार हो, अज मेरे कलगी सती पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री राम, धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां च फतेह प्राप्त नासवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया, अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦਮ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਆਓ ਜੋ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਲਗੀ ਦਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਬੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

पहली बार बन गया है। निरंकार मेरा खालसा समा वास्ते कर दिया कला कर मौत नू वेख के डरे नहीं निडर हो जाए।

0: सिंह जी महाराज मस्तुआने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकेडमी गुरुद्वारा बड़ू साहब दिया बीबिया दा ढाडी जथा आदम अति सत्कार सहित फतेह अर्ज करदा है। सारे गज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: कलगी तार उत्ते लेखा खत्म हुंदा जदों करी दी खोज लसानिया दी जिसने अपनी वस कुर्बान करके डूबदी हिंद रखी
1: हिंदुस्तानिया दी
0: जिथे पुत्रां दी देनी बड़ी पेंदी होश भुल जांदी वड्डे दानिया दी। कलगी तर दशमेश दी जिंदगी ते हद खत्म है कुल
1: कुर्बानिया दी।
0: गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंदुस्तान दी डूबदी बेड़ी नू बन्ने लाया पर एक ऐसा समा आया जदों मुगल हुकूमत दे बादशाह औरंगजेब अते बाई तार दे राजियां ने मिलके अनंतपुर साहिब दे किले नू घेरा पा लिया। कई महीने किले नू घेरा पिया रहा, किले विचला सारा राशन पानी खत्म हो गया। बारों बादशाह औरंगजेब अते बाई तार दे राजियां ने ए झूठियां कसमां खा के कहा कि पातशाह तुसी किला छड़ दियो, साडियां फौजां तुहाडे ते कोई हल्ला नहीं करनगियां। इन्हां जालमां दियां झूठियां कसमां ने माता गुजरी जी अते कुछ सिंघां दा विश्वास जित लिया। माता जी दे कहन ते कलगीधर पातशाह नू अनंतपुर साहिब दा किला छड़ना पिया। जदों गुरु साहब किला छड़ के जा रहे सन तां इन्हां जालमां ने अपनियां सारियां कसमां भुला के गुरु साहिब दी फौज ते हल्ला बोल दिता। उस वक्त सरसा नदी विच भी हड़ आया होया सी। सरसा नदी कंडे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा सारा परिवार खेरू खेरू हो गया। सरसा उत्ते कमसान दा युद्ध होया, थोड़ा किसे पासे थोड़ा किसे पासे पेटा नदी दी कीमती ग्रंथ हो गए। बाद किसे पासे घोड़ा
1: किसे पासे
0: जेड़ा चावां नाल महल उसारिया सी, इट किसे पासे रोड़ा किसे पासे सोने सूरज के चंद जेहे पुत्रां दा जोड़ा किसे पासे ते जोड़ा
1: किसे पासे।
0: सरसा नदी तो विछड़ के पौधी ठंडी रात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 40 सिंघां समेत रोपड़ दे इलाके वल वधे। थोड़ी अगे गए ता पता चलिया कि रोपड़ दे पठान फौज इकट्ठी करके रस्ता घेरी बैठे हन। गुरु साहब ए राह छड़ के चमकौर साहब वल वधे। चमकौर साहब दे नेड़े पहुंच के गुरु साहब ने अपना उतारा एक बाग विच कीता। खबर सुन के एक जिमीदार आया, आके गुरु साहब दे चरणा विच बेनती करन लगा, महाराज मेरे लायक कोई सेवा दसो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिस तरह उस जिमीदार दी कच्ची गड़ी विच रुकन वास्ते फुरमा रहे हन, उस दृश्य नू अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा आप जी दी सेवा विच है, यो रखदा है।

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश दास की रुचि है कि सारी संगत ही मूह मिठा कर दे भी चंगा ही है रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए अपना बोलिया आप सुने।

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गए जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन तेरे चरणा नाल जुड़िया हां फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया मैं न गणेश है प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं मेर करो त्रिन ते मोह जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं।

तीन पैसे पलियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवें हेरे जवाहरात, महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने किया, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है।

दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे आ। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो रहे। तंबू च पैर पाया, मन खिचिया गया, क्यों? महापुरुषां नूं मिलिए ता मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा, श्रद्धा विच आ जांदा। किस दुनियावी आदमी नूं मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आंदा। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन कीते, कहण दी लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दिओ। साहिबां दे चरणां ते ओह तीन पैसे रख के मत्था टेकिया, बिना मंगिया

गुरु साहिबां नालों विछड़ गए। सरहंद दे नवाब ने माता गुजरी जी नूं अते छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद ठंडे बोरी दे विच

कर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने, ओ कदी चुकदे या टुटदे नहीं।

ना घबराए, चेहरे ते दृढ़ता है, डर दा कोई नाम नाम निशान नहीं। इटा लगदियां गईयां छोटे साहबजादे।

बदल लो राज करोगे नहीं तो तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। साहबजादे ने कहा साड़े दादे दी पग बड़ी उची है मौत दे डर तू सिर झुका दी दादे दी पग नू दाग ला दी ए नहीं हो सकता उन्ना मरना कब

तेरे किन्ने गुण ने, तू इनी बाणी पढ़दा है, शस्त्र विद्या भी सिखदा पे, गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पे। एक गल दस, संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं? क्यों मांज रहे ध्यान देना, ये बड़ी गुण जड़ा ना, ये माधो साधु जन देव मिला।

0: खालसा जी आज सब तो पहला गुरु साहिबां दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दिया जालम सरकारां सिंघां सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होया सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुक्म जारी कर दिता कि जेड़ा सिंघ दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ती गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदियां होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंघ नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे